रेडियो मनाटासी शबे चार खर के तमाम सुनने वालों को आज रास खेकी की तरफ से बड़ी ईद की बड़ी खुशियां बहुत बहुत मुबारक हो।

रेडियो मराठा से शहर चार खर के तमाम सुनने वालों को आज रास खीकी की तरफ से बड़ी ईद की बड़ी खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हो।

रेडियो मनाटासी शरे चार खर के तमाम सुनने वालों को आज रास खेकी की तरफ से बड़ी ईद की बड़ी खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हो।

रेडियो मराठा से 4.4 खर के तमाम सुनने वालों को आज रास खेकी की तरफ से बड़ी ईद की बड़ी खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हो।

0: रेडियो मनाटासी शारे चार खर के तमाम सुनने वालों को आज रास खेके की तरफ से बड़ी ईद की बड़ी खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हो।
1: त्योहार है खुशियों का है त्योहार, न तेरा है न मेरा है ये सबका है।
2: السلام علیکم زیما گل لالا تاسو ته دا ریډیو امن 88.4 کرک لا طرفا دا لوی اختر لوی خوشالۍ ډېرې ډېرې مبارک شه۔

रेडियो मराठा से शहर चार खर के तमाम सुनने वालों को आज रास खेकी की तरफ से बड़ी ईद की बड़ी खुशियाँ, बहुत बहुत मुबारक हो।

अच्छा जी बिल्कुल कॉल वैसे मिली जी आओ बिल्कुल बैक टू बैक कॉल वैसे मिली जी तो अच्छा था हाँ ईद मुबारकबाद इसको फलवान था बिल्कुल कॉल कॉल वैसे वो पीटीसी नंबर बांधे नंबर दे 09272912922 यानी 09272921 200 बांधे कॉल कॉल वैसे

मैसेज इस चुके बिल्कुल रवान दी मैसेज पर प्रोग्राम की शामिली जी ग्रेड मलिक का मैसेज करे दी दावे बिल्कुल शामिली जी वर्सोस रकी पटक मैसेज करे दावे हां शामिली जी देना ये लवा अच्छा मैसेज करे दी रकी पटक जिया दिजियात मैसेज इस करे दावे टोल शामिली जी वर्सोस रा शाह फैसल बनो ना मैसेज करे दा शाह फैसल बखैर हो गई दी मुबारक खजी देना ये लवा अच्छा मैसेज करे दी रुशिहान मैसेज करे दे बिल्कुल टोल मैसेज प्रोग्राम की शामिली जी रहमान दावड़ दामे बिल्कुल शामिली जी

बिल्कुल युवा संदर अवे द करक पनो बाने हबली कीजी दासे युवा संदर द बनो पनो बाने हबली कीजी दासे डोमेल पनो बाने युवा संदर हबली कीजी दासे लकी मरवात

0: हाँ जी बिल्कुल कुर्बान दिशा कसी जब कालवा ने बलसो को दिखिम से ना देव 0927291292 बने अस्सलाम वालेकुम जी सुख खबर की विकम से ना
1: मालूम वजीरा
0: ना मालूम वजीरा ना मालूम वजीरा खबर के भाई खजी कम देने कॉल करे दे
1: अच्छा
0: सही सही

अच्छा जी बिल्कुल, फर्स्ट मैसेज ऑफ द शो विच अस्सलाम वालेकुम एंड ईद सेकंड डे मुबारक टू रेडियो ओमन टीम एंड ऑल स्वीट लिसनर्स एंड जनाब

अच्छा जी, नेक्स्ट जी तारिक, बहुत अच्छा किया आपने कि ईद फर्स्ट डे आपने अपने घर वालों के साथ एंजॉय किया। अगर आप फर्स्ट डे पर शो करें पर ये मुमकिन नहीं कि हम शो सुन सके क्योंकि मेहमान होते हैं ईद के पहले दिन, सो आप भी आपका भी वाडी वाडी मेहरबानी, वाडी वाडी मेहरबानी। अच्छा जी डी रमाना, सलाम टू ऑल फ्रेंड। ओके मी दिस ग्रेट मलिका, हाँ जी डेरा मनाना, थैंक यू ग्रेट मलिका, यो जहान मनाना, प्रोग्राम से मैसेज को बोले डेरा डेरा मनाना, और द फर्स्ट मैसेज को बोले हाँ डेरा मनाना। रकीब पटक मैसेज कर दे बेचे, रकीब पटक के दमलिक सिंह जीना, गुड गुड मॉर्निंग तारिक जी भाई, डेरा मनाना रकीब पटक तो सा प्रोग्राम से गुड मॉर्निंग, थैंक यू रकीब पटक, ब्याई कना छे रकी पटक भाई, देर वॉज अ टाइम वेन आई मैच्ड एवरी थिंग परफेक्टली विद माई ईद क्लॉथिस, बट नाउ आई एम सम वन हो डिड नॉट इवन ब्रदरली कैसे लिख लीजिए टू बाई क्लॉथिस। डेरा बनाना रकी पटक, यो जहान बनाना।

और रखी पथक भैया कहना चाहिए सर, रखी पथक मलिक सिंह जी नाम, आप मेरा चेहरा देखकर मेरे गमों का अंदाजा नहीं लगा सकते, मुझे आदत है बेवजह मुस्कुराने की। अच्छा दा भी पता ना सर की वर्षक डेर मनाना मैसेज के बोले थैंक यू भैया वही कहना चाहिए। ईद उल अजहा का सेकंड डे आपको बहुत बहुत मुबारक, खैर मुबारक डेर मनाना। थैंक यू रखिए पथक। और यह कहना चाहिए तारिक भाई, हम अपने रेडियो से रेडियो वन करक से इतने बेपनाह मोहब्बत करते हैं, इनका मिसाल नहीं मिलता। बिल्कुल सही तो देख शक निश्चा डेरा मन सुमरहमी नवाली माशाला प्रोग्राम डेर शौक बांधे और रेडियो ओवन प्रोग्राम शौक बांधे और थैंक यू रकीब फतेह शाह फैसल मैसेज करे बनो ना फ्रॉम बन गुल विच ईद दे स्पेशल डे डेर मुबारक शाह खैर मुबारक डेर मनना और शाह फैसल काल हर कड़ा प्रोग्राम से देन अलवा नेक्स्ट विच अस्सलाम वालेकुम एंड अस्सलाम वालेकुम तारिक भाई मेक यू टू जिहान गुड गुड मॉर्निंग फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको दिल की गहराइयों से ईद का सेकंड डे बहुत बहुत मुबारक हो। वालेकुम अस्सलाम डेरा मनना थैंक यू तो साहब प्रोग्राम से गुड मॉर्निंग और खैर मुबारक हो तो साहब ईद सेकंड डे डेट मुबारक शाह थैंक यू सो मच रुशिहान मैसेज के बोले। दिन अलवा नेक्स्ट में क्यूट रुशिहान तारिक भाई खैर दे अख्तर दे मुबारक शाह का खैर देता हुई लिखली खैर दे मुबारक शाह। अच्छा अख्तर दे मुबारक शाह तोता मुबारक शाह वाह जीवा द बीजेम कुसम खान की हाजी डेरा मनना थैंक यू रुझान मैसेज के बोले यो जहान मनना। और दिल नेक्स्ट विच इस्लाम सोंग फरमाइश कर दी सलामी विली पत्र नाम देने दिवस निकल आई। वालेकुम असलाम डेरा मनना सॉन्ग फरमाइश करे कोशिश करो डेरा मनना मैसेज।

अच्छा जी देने लवा नेक्स्ट मैसेज आसपास ही मंडान बनो अस्सलाम वालेकुम तारिक चाचा हाउ आर यू बड़ी ईद की बड़ी ईद का सेकंड डे बहुत बहुत मुबारक हो आपको और सब लेसर को बहुत मुबारक हो चाचो मैं चावल बना रही हूँ सिस्टर आ रही है अच्छा अच्छा सही ठीक सा बिल्कुल दा खबर हाँ सही तो द ईद पकोश चावल मतलब सड़ाई तयूर की ना नो डेर खान हाँ कविदा खबर हाँ बिल्कुल सही दो

मैं हूँ असमा नूर वजीर फ्रॉम मंगल मेला। मैंने अपने बालों के लिए कई शैम्पू आजमाए लेकिन कोई रिजल्ट नहीं मिला। फिर मैंने अमन रेडियो करक पर इकराम मामू का प्रोग्राम सुना। उन्होंने एश्मा आनियन शैम्पू के बारे में बात की। जब मैंने मंगवाया और इस्तेमाल किया, माशाल्लाह उसने मुझे कमाल का रिजल्ट दिया। मैं सब बहन भाइयों को ये मशवरा देती हूँ कि अगर आप लोग अपने बाल मजबूत और सेहतमंद बनाना चाहते हो तो आज ही अपने करीबी दुकानदार से एश्मा आनियन शैम्पू मंगवाए। एश्मा आनियन शैम्पू सेहतमंद।

अच्छा जी बिल्कुल सही। अच्छा जी बिल्कुल मुक्त मैसेज कर दे बच्चे अस्सलाम वालेकुम वेलकम भाईजान अख्तर दे मुबारक शाह भाई संग मिजी शर्त दे आगा शो था रा वाला मिजी खुदा से कहना चाहे अलग शान दे आराम ये कहो खा वैसे आवाज दे सफा रजीप नेट बांधे आई एम डॉक्टर जोया फ्रॉम डुमेल डेरा मने ना डॉक्टर जोया डुमेला द मैसेज वो कहूँ लो या खजा शी

ओके जनाब दखीरे वेची लका वेता ता दा ता बिखी वे मना वे लका दनो खारियानो मिनाडो लखारिया नमा दा सखरिया मा जमंगा पदसी ओबन दा कमरा के वलाणी मा लका बदसी ओबन दा कमरा के वलाणी मा नबदी के माता हिस्सम न करी सिर्फ पलजाना दबगे करी उजाना दा बदी बुनिया सर करी चे जानता कतलेम न शमोली न शमगा दा लयार चे लका सूरत हाल ला सीधे जीचे भैया बगोरे दयो प्रोग्राम निम दे गोरे भैया बारमान गवई गोरे खा भैया बगे खातिर चा रासा रासा रास मना तुम रडी रली वनी मिने दर गुची तवे चिस पाणस तखेरा एमएसडी ते संगे यारा सियादी सिंह देर करक वाले उदी कवल यारा एमएसडी तावाजो को देख पले सर लगनेरा मुंगे दगल सुपी जने गने बेजने देखेरा हो बाहर गया ब्याम ब्याम थैंक यू डेरा डेरा मनना डेरा डेरा जत शुक्रिया जी खुशाल उसी आवाज उसी देखेरा ब्याम जमगा प्रोग्राम सुख सुख चत चत उरी देखेरा राजी खान

0: मौका जनाब देखे रहे बलवरी दिन के प्रोग्राम की शुरू को अस्सलाम वालेकुम जी।
1: वालेकुम सलाम
0: जी, सो खबर के रुआ
1: आगा कासिम।
0: हां वाय के कुर्बान
1: मरा खैर दा।
0: हां खैर दा मंद अल्लाह करम दा
1: प्रोग्राम से शुरू दा।
0: हां बस शुरू दा यार न
1: तेरा खोर गाना हो प्ले का
0: खा प्ले कोम न तख कमई वरे खो खदा
1: राकी बोला प्ले का
0: खा करो दे चाओ दे दे। हां شیر دے واؤ رہے تو بڑی خیر کے جدا شیر ہوئے لو وہ جلگا مینگ مہین خل گیا نا

सरावर सरा दकारक आमन रेडियो 88.4 88 इशारिया 4 आखे सम्राम सीनियर दी तारिक अजीज भाई एम एस डी भाई सम्राहम मैनेजमेंट आगो टोल हम शुक्रिया अदा कामा पाकर बुलिसे ताको तो हम खुआ की जुआने उनती फरमाया मीना सुमा मीना सश्वले मना राजा कना

0: रेडियो मनाटा से शायद चार खर के तमाम सुनने वालों को आज रास खेकी की तरफ से बड़ी ईद की बड़ी खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हो।
1: त्योहार है खुशियों का है त्योहार, न तेरा है न मेरा है ये
2: Assalamualaikum, Zem Sabdar Iqbal Abasi, Zamala Tarafa, The Radio Aman 88.4 La Tarafa. Tausta, The Ghat Akhtar, Ghat Khushale, Dere Mubarak.

रेडियो मनाटासी शारदा चार खर के तमाम सुनने वालों को आज रास खेकी की तरफ से बड़ी ईद की बड़ी खुशियां बहुत बहुत मुबारक हो।

केसर मोबाइल जोन मंगल मेला मलिकिलाज मार्केट के तमाम प्रोडक्ट मौजूद है। केसर मोबाइल फोन द मोबाइल दुकान दे मंगल मेले की मलिक इलाज मार्केट की सहित द्वेम दुकान चिकन दे वजीर की लिखी दे दस रहूम चिकन दे तमाम प्रोडक्ट मिलाई की।

रेडियो मनाटा से शायद चार खर के तमाम सुनने वालों को आज रास खेकी की तरफ से बड़ी ईद की बड़ी खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हो।

हवा में है खुशबू ईद की, दिलों में मोहब्बत है अपनों की और लबों पर दुआ है आप सबके लिए। मैं हूँ तारिक अजीज, तमाम सुनने वालों को बड़ी ईद की खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक।

0: रेडियो मराठा 88.4 खर के तमाम सुनने वालों को आज रास खेके की तरफ से बड़ी ईद की बड़ी खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हो।
1: त्योहार है खुशियों का है त्योहार, ना तेरा है ना मेरा है, ये सबका है त्योहार। मुबारक ईद मुबारक, मुबारक ईद।
2: अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इंजीनियर मसूद। मेरी और रेडियो अमन की पूरी टीम की तरफ से आप सबको ईद की खुशियां बहुत बहुत मुबारक।
3: अस्सलाम वालेकुम, जेम तारिक अजीज मातरफ ना तासु ठोलू था गट अख्तर खुशहाली डेढ़ डेढ़।

हवा में है खुशबू ईद की, दिलों में मोहब्बत है अपनों की और लबों पर दुआ है आप सबके लिए। मैं हूँ तारिक अजीज, तमाम सुनने वालों को बड़ी ईद की खुशियाँ, बहुत बहुत मुबारक।

सुखे दिलांडे का तोरे नरेस्तर गिरो जवाते व्यापोटांडे का वाख वाख शिरीने दिजड़ दर्दुना मिजयुत शवीदी मड बोश बे वो रखताय दे पोरा तारो मांडे का वाख वाख शिरीने दिजड़ दर्दुना मिजयुत शवीदी मड बोश बे वो

0: अच्छा जी जी राज भाई
1: सही ओके बिल्कुल तरनम साइड तसी या वो प्रोग्राम तर तसु मैसेज बला रोगली काल
0: जी जी बिल्कुल अवश्य मिलेगी बिल्कुल
1: वले मयन श्वले जड़ गया वले मयन श्वले जड़ गया पगम दे वाड़ा वलम वले मयन